प्यारे नदिया आंखों की सतरी तो प्यारे नदिया अकबर प्यारे नदिया आंखों की सतरी।